झूठी हो सकती है, अरे थोड़ा झूठी हो सकती, सुना सुच है, हाथ सुच है, ना बंदा।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लंघ के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द तद घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया

और न यह महत्व में अवतारी उजागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथराज ने अमृत नाम पियो एह मद ते मत चुके रे मन पेद बेद न जान बियो पर ताचर दे गुरु अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म।

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दी।

जान के नहीं पूजिया, तन्ने ने ता ठाकुर जान के पूजिया। और फिर भगवान नू उस पत्थर विचो तन्ने नू ठाकुर हो के दर्शन देने पे। सात संगत बोलो श्री ए है भाई जिन प्रेम।

आंधी तोंद मिट गई। संसार ते पापां दी तोंद छाई होई सी, कोई कर्म कांडां विच पिया है, कोई जोगियां दे पिछे पिया है, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है। परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी, पाप विच रुझिया होया संसार।

मैं ए वेखदा कि मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं ता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैं ता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी सात संगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो। आप नारायण दा रूप

खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते सारी खेती उजाड़ दिती। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया ए तां मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता। आख्या मैं तां उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। एदा हरजाना पर भई तेरा पुत्र है ना नानक। मेहता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू कोई कम कार नहीं करदा वेले बैठा रहंदा है। एक काम इस नु करन वास्ते भेजा सी ओ भी उजाड़ के आ गया।

खान कोलो गुरु नानक सच्चे पातशाह नु मोदी खाना लै दिता। आख्या इत्थे बैठ के हुण दुकान करेगा ता इसदा चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए। किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदे गुरु नानक ओदी चोली भर देंदे। एक दो तीन चार पांच जेड़ा

ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया उदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सार संगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के वस्तुआं दे जाऊंदा ते गुरु नानक सच्चा पातशाह चोलियां भरी जांदा किसे ने जाके विद्रोहियां ने शिकायत कर दीती दौलत खान तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है चोली विछांदा है गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया ते अगे फिर काम चलावांगे साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई कर लो हिसाब ते जदों सारा हिसाब होया इतिहास विच लिखिया है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए दौलत खान बड़ा हैरान होया कहन लगा मैं सुनिया के तू सारे नू रब दे नां ते दे जांदा ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च कर

निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंगुर प्रसाद अजूनी सै भंगुर प्रसाद तक जदों गुर प्रसाद तक जदों

ही नहीं निकल रहा। ते भाई जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गई। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, परोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, ओ कदे डूब नहीं सकदा। ताईं सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी भजी बेबे नानकी, मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया गुरु नानक सच्चे पातशाह सामने बेबे

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसिया कैसिया सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन

पंडित जी बड़े विद्वान। पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है। ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी। ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है। ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा। जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन। गुरु तारन नहीं सी कीता ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं। ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाउ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे। रात सारी नींद नहीं आई ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नू राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यो ज्यो पाठ सुनदे बाबा अमरदास जी त्यों त्यों कलेजे ठंड पैंदी जांदी। मानो अंदर उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा। मन टिका विच आ गया। नूराणी कोलों पुछया जा करके बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है। अगों जवाब मिलिया पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे। उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेके।

बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं आज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते आज दास बन के आया। आज ते मैं अपनी चोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लव। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगता नू छकांदे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लेके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन, ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकता है, जुलाही ने भी किया कौन हो सकता है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी, इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, कड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है, उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई, ते ज्यो ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया, ते इशनान करके बिठाया तख्त ते, ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणिया दे मान हो, निताणिया दे तान हो, न्योटिया दी ओट, निगत्या दी गत, पत्या दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया, ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता, इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंग

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उना नू तृप्त कीता।

राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज उथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए भाई साहिब भाई गुरुदास जी सारियां नूं

ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके, हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे।

प्यार नाल, प्रेम नाल, इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नूं हरि मंदर दे विच टिका दिता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने जैसे सत मंदर कंचन

ए तलहसी खाक में माणी गोर करे तन होती खाक निमाणी गौर करे अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी दुनिया।

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिलमना करियो मीत।

ज्ञाने त्याने च प्रपेख रण नहीं इठाए छाड़ छाड़ पगले गए मूड पाए लपताए।

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार विचार ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया किठिनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गहे

छिन छिन और बेहात है, फूटे कर जो पानी सोदन आवन लागा, सोदन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहां को है कांका, जब लग जोत में बरते आप न बूझे, लाश करे जीवन पर कारण, लोचन कछु न सूझे, कैस कबीर सुनोरे प्राणी, कैस कबीर सुनोरे प्राणी, छोड़ो।

darling. जीव तो व्यवहार है जको तो जानो जीव तो व्यवहार है जको तो जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावे से कुसाई खां सबे उठ जासी।

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईआं पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला है, गुरु वाला है, जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते। फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दी हजूरी विच जिवें उन्होंने माण कीता, आपां भी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

तेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार अवगुण कौन चितार गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता जानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु नाल।

लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख

सवाए कुछ कुछ चीजा जेड़िया धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुद्र दे अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक के इस वेले तां बंदा अपनी खाद खुराक के मामले विच भी समझदा ना, धरती तो पूरी ना हुई ते समुद्र दियां तहां विच बड़ा कुछ मौजूद। समुद्र दियां तहां च पाए जाण वाले कितने ऐसी किस्म के पौधे ने जेड़े हेठां तहां विच ही पलदे ने, तहां विच ही खत्म हो जाते। यह तां शरीरक लोड़ां साडियां कि असीं उधर झाकणे, बाकी बड़ा कुछ इतना है। धरती ते वरतों विच आ रहे सोने नालों दर्जना गुणा ज्यादा सोना समुद्र दियां तहां विच मौजूद है। कितने हीरे जवाहरात ते समुद्र दी तह ने लुका रखे, पर हथ किनू आउंदे ने। आपां इक मोती दी गल करी, सिप्पियां समुद्र दे कंढियां ते पईयां रुलदियां, उन्हां च मोती नहीं हुंदे। जिवें असीं गल्लां बड़ियां करने आ, हर गल दा मतलब नहीं हुंदा, हर गल विचों कुछ लभण वाला नहीं हुंदा। लभदा उस सिप्पी विचों है जिहड़ी खास टिकाणिया उत्ते वड्डे आकार दी, जिहदे विच जीण वाला जानवर, उस सिप्पी दा जानवर जिहड़ा मोती जानवर जिसनू कहिंदे ने, उह अपनी लभ तों अपने अंदर आए हुए पानी दे कतरे नूं जां रेत दे दाणे नूं अपना लुआब लपेट के मोती बना दिंदा। उह मोती ना केवल सिंगार दे काम आया, बल्कि उस मोती ने कई बार मनुख दीआं कई बीमारियां नूं कट के दवा दा काम भी कीता। भावे गल वखरी, अज दे वैद चुके कीमती सिप्पियां नूं पी के ते मोती कह के वेच देंदे, सिप्पी दा ही पुछता करदे ने, कहिंदे ने वी तां उसे लभ तों ही बणे जिस तों मोती बणदा। लेकिन नहीं, सिप्पी सिप्पी है, सिप्पी दे अंदर बनने वाले मोती की कीमत बहुत ज्यादा है। राजे महाराजे उहदा मुल पाउंदे सन, पर हर कोई तां उस मोती नूं ना लै सकिया। आखिर किसी ने पानी दे अंदर कुद के पानी दे अंदर गहरी छलांग लगाई। अज तां बड़े साधन हो गए, पुराने समयां च साह रोक के डुबियां मारदे सन। साह रोक के इन्ने अभ्यासी लोग किन्ना किन्ना चिर साह रोक के घड़ियां बद्धी ओ समुद्र दियां तहां विच मोती दी सिप्पी लभदे सन। लभ के लिया के उहदे चो खोज के फिर हर मोती चो सिप्पी नहीं लभना, किसे किसे मोती चो लभना, किसे किसे सिप्पी विचो मोती लभना, ओनू विन के मुल पाउणा जाणदे सन। इह इक मोती दी गल नहीं, भाई साहब तां कहिंदे ने समुद्र च बड़ा कुछ है, पर ओह मोती जिहड़ी है ना केवल गोताखोरां दी खोज दी सिटे दी फल दी गल है, बल्कि एक होर भी गल है कि जिवें मान सरोवर च कहिंदे ने मोती बहुत हुंदे, पर उत्थे किनारियां ते बैठे बगले सिप्पियां ते डड्डुआं नाल ही कम सारदे ने। हंस दी क्योंकि खुराक मोती है, ओ सिप्पी मोती वाली सिप्पी चुन के लियांदा है, तह विचों डुब्बी मारदा है, चुन के लियांदा है, उस सिप्पी नूं खोलदा है और बड़ी औखी खुलदी। इह जानवर ऐसा घुट के मीटदा है अपनी सिप्पी नूं, बड़ा मुश्किल खुलदा है। आम तौर ते इस मोतियां दे जिहड़े खोजी हुंदे ने इहनूं धुप्पे सुट छड्दे ने, उह मर जांदा सुक के ते विचों मोती कढ लैंदे, पाणी दी थुड़ तों मर जांदा सुक जांदा, नहीं तां सिप्पी खोलणी इक मसला बण जांदा। लेकिन हंस करदा है मेहनत, उस सिप्पी नूं खोल के मोती जानवर दे मूंह विचों उहदे कब्जे विचों मोती कढदा है ते कढ के निकल लैंदा, उहदी खुराक है। ते जे उहनूं सिप्पियां चो डिगे मोती लभ जाण ते उहदे बाहर उह तहां विच जांदा है, मान सरोवर दियां तहां च जा के मोती लभदा है, उहदे बिना उहदा जीवन नहीं। हंस दा जीवन मोती है, इसे तरह सिख दा जीवन नाम है, ते नाम इस नूं मिलदा है बाणी दी खोज विचों। कहिंदे जिवें समुंदर विच सरोवर विच बेअंत पदार्थ पए होए ने, मोती भी उत्थे मौजूद है। हंस गहरी टुब्बी मार के श्वास रोक के औखा होके जरूर विश्वास रखो नेचै प्रसाद पावेई अपने छकन जोगे मोती लभ रहे होंदे। कहिंदे जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सोध, पर्वतां विच हीरे भी हुंदे मोती भी हुंदे ने, पर्वतां नूं खोज के उहनूं खनवारा जिहड़े खाणा पट्टण वाले लोक ने उहनां पर्वतां नूं पछाण के कि किथे हीरा हो सकदा है, किथे कीमती पत्थर हो सकदे, खण के मिट्टी छाण के पत्थरां नूं तोड़ के उह हीरे कढ लिआउंदे, ते निरे कढ नहीं लिआउंदे, उहनां नूं चमका के पालिश करके उहनां नूं ठीक डायमेंशनस दे के उह संसार च मुल पाउंदे ने उहनां दा। हीरा बड़ी सख्त चीज है, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भक्ति करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां, जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन

जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन। 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन। ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना। ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान। पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है। ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी। ते पंडित जी ने कहा, बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है। ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा। जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नू परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया, बाबा जी आप दे गुरु कौन हन? गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा, मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाउ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे। रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुन

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगों जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे। उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेके।

लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते अज दास बन के आया। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकान दे, संगता नू छकान दे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लेके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन, ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकता है, जुलाही ने भी किया कौन हो सकता है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, कड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है, उसनू ते निथावियां दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई, ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया, ते इशनान करके बिठाया तखत ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे मान हो, निताणियां दे तान हो, न्योटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत, पत्तियां दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया, ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता, इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंगद

तू सुचा समझ के लियांदा है ओ ता झूठ है। किवें परमेश्वर ने 84 लाख जूना पैदा की थी।

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा

परसोचिया मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणु

शेर दी आवाज आई। भगत जी उस पासे तुर पे, सामने शेर आया। शेर दी अखां दे विच अपनी अखां मिलाई।

इस तरह रम्य होए जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है, जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे उदों नजर आवेगा।

गरीब ब्राह्मण दा रूप धार की भगत नामदेव दे सामने आ गए ते नामदेव नूं ही पुछदे ने ओ भगता नामदेव दा घर केड़े पासे। नामदेव जी कहन लगे तुसी नामदेव दे कोलों की लैणा। ब्राह्मण भगवान कहंदे ने भाई मैं सुनिया है नामदेव बड़ा दानी मेरे कोल कपड़े नहीं हैगे हो सकदा है ओदे कोलों कोई कपड़ा मिल जाए। नामदेव जी कहन लगे ब्राह्मण देवता नामदेव दा घर बड़ा दूर जिन्ना तुहानू कपड़ा चाहिदा है मेरे कोलों सूत्र लै लो। भगत जी ने अद्धा सूत्र उस ब्राह्मण नूं दे दिता। अद्धा सूत्र लैके ओ भगवान कहन लगे भाई हुण तां नामदेव दा घर दस दे। भगत जी कहन लगे हुण की लैण। कहन लगे भाई सूट तू दे दिता है ते पग दा कपड़ा मैं नामदेव कोलों लै लांगा। ते नामदेव जी ने सारा ही सूत्र दे दिता ते आप

पले पयो प्रिया मनिया सुख सहज इस करका जानिया हो बंदी प्रखिस्मत बार अवनासी अगम्य पार ले पक्का प्र